0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: हरि सर, म लक्ष्मी भुषाल सुनिराछु रेडियो एनआरएन 99.1।
2: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो फिल्मी मेलोडी।